மார்னிங் சத்ரபதி சம்பாஜி நகர். யூ ஆர் லிஸ்னிங் MGM 90.8 FM. एक्झॅक्टली 7:12 ची ही वेळ झाली आहे. आय होप की तुमची आता झोप पूर्ण झाली असेल आणि उठा उठा सकाळ झालेली आहे आणि नवीन दिवसाची सुरुवात झालेली आहे. नवीन दिवस म्हणजे एक नवीन सुरुवात असते आणि जे पाठीमागे राहिलेलं काही काम वगैरे असतात, काही अडचणी असतात, ते सॉर्ट आउट करण्याचा आजचा हा दिवस असतो आपण असं समजू शकतो. क्योंकि हर एक दिन की शुरुआत पॉझिटिव्हिटी के साथ ही होनी चाहिए. तो चलिए फिर पॉझिटिव्हिटी के साथ आज के शो का आगाज करते हैं. कल करे सो आज करे सो अब कर, ये बात समझिएगा और आज के काम कल पर मत टालिएगा, वरना फिर टालते रहोगे और काम बढ़ते रहेंगे. ये था आज का मॉर्निंग सा विचार, इसी को अमल कीजिए और फुल और मस्ती के साथ आज के शो में बहुत सारी बातें होगी, मुलाकातें होगी. क्या कुछ रहेगी बातें पता चलेगा आपको कुछ ही देर के बाद. तब तक के लिए एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड.

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: रोहित नाम का एक मैनेजर एक नए और मुश्किल प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। उसे लग रहा था कि वो फेल हो जाएगा और उसकी जॉब चली जाएगी। उसी टेंशन में वो कंपनी के सबसे पुराने प्यून रामू काका के पास बैठ गया और बोला, काका इतना प्रेशर है कि लगता है क्विट कर दूं। रामू काका ने मुस्कुराया और कांच का खाली गिलास दिया और पूछा, रोहित साहब इस गिलास का वजन कितना होगा? रोहित ने कहा, बहुत कम, मुश्किल से 100-200 ग्राम। रामू काका ने कहा, बिल्कुल सही, लेकिन अगर मैं इस गिलास को बिना हाथ बदले 10 मिनट तक पकड़े रहूं तो? रोहित बोला, हाथ में थोड़ा दर्द होने लगेगा। रामू काका ने आगे पूछा, और अगर मैं इसे पूरे दिन ऐसे ही पकड़े रहूं तो? रोहित ने जवाब दिया, आपका हाथ सुन हो जाएगा और गिलास हाथ से गिर जाएगा। रामू काका ने कहा, साहब इसे पूरे वक्त में गिलास का वजन बिल्कुल नहीं बढ़ा, लेकिन मैं जितनी देर तक इसे पकड़े रहा ये उतना ही भारी होता गया। ये कॉर्पोरेट स्ट्रेस भी गिलास जैसा होता है। अगर आप दिन भर के छोटी मोटी बातें, डेडलाइंस और टारगेट के स्ट्रेस को 24 घंटे अपने दिमाग में पकड़े रखोगे तो एक दिन आप बर्नआउट हो जाओगे। काका ने आगे कहा, कामयाब लोग स्ट्रेस फ्री नहीं होते, बस उन्हें पता होता है कि कब गिलास को नीचे रखना है। ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ दीजिए और घर जाकर फ्रेश हो जाइए, तभी अगले दिन आप नए जोश से काम शुरू कर पाएंगे। रोहित को अपनी गलती समझ आ गई। उसने दिमाग से फालतू का डर निकाला और फोकस होकर काम किया। उसका प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा। तो इससे सीख हमें क्या मिलती है? वर्क प्रेशर लाइफ का हिस्सा है, पर उसे अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। काम के बीच शॉर्ट ब्रेक लो और ऑफिस के बाद पर्सनल लाइफ को एंजॉय करो। गिलास को समय पर नीचे रखना सीख लो, समझे?
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, गर्मी तो शुरू है भाई और बॉडी ने ऑलरेडी कंप्लेन फाइल कर दी है। आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM। सुबह घर से निकलो, ठंडी हवा, दोपहर तक फुल तंदूरी चिकन और शाम को एसी में बैठ जाओ या कूलर के सामने, बस यही है सर्दी और गर्मी का कॉम्बिनेशन। बॉडी को कंफ्यूज कर देता है, कभी गला खराब, कभी हेडेक और कभी सडनली बुखार भी आ जाता है और हम बोलते पता नहीं यार क्या हो गया मुझे। अरे भाई, ये सब गर्मी प्लस धूप प्लस ठंडी हवा का मिक्स इफेक्ट होता है। तो सिंपल सी हेल्थ टिप सुन लो, इजी और प्रैक्टिकल। सबसे पहले पानी, दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है क्योंकि डिहाइड्रेशन सब प्रॉब्लम की रूट होती है। बाहर जाते वक्त डायरेक्ट धूप अवॉइड करो, कैप या गमछा यूज करो, फुल बेसिक प्रोटेक्शन। घर आके तुरंत एसी या कूलर के सामने मत बैठो, बॉडी को कम से कम 5 से 10 मिनट नॉर्मल होने दो वरना वही सर्दी और गर्मी स्टार्ट हो जाएगी और आपका सर दर्द करना शुरू हो जाएगा। अक्सर ना हमने देखा है कि गर्मी के मौसम में बहुतों का सर दर्द होता है जब धूप से वापस अपने घर में आते हैं, छांव में आते हैं। वो क्यों होता है पता है? आप सडनली आकर डायरेक्टली एसी या कूलर के सामने बैठ जाते हो। तो ठंडी बोतल पे अटैक मत करो, इंस्टेंटली नॉर्मल या थोड़ा कूल वाटर भी आप पी सकते हो। खाने में लाइट और घर का फूड रखो, ज्यादा ऑयली और स्पाइसी अवॉइड करो। दोस्तों, गर्मी से लड़ना नहीं है, समझ के हैंडल करना है। छोटी छोटी हैबिट बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। तो ये बात याद रखिए और हेल्दी रहिए, सेफ रहिए।

0: मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उस पर गौर करते हैं क्या? आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM और इसी पर बात करने के लिए, मेंटल हेल्थ को वेल रखने के लिए अपने साथ है डॉक्टर मानसी करसगांवकर मैम, HOD MGM साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। सो मैम, मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि क्या मेडिटेशन, एक्सरसाइज या ब्रीथिंग टेक्निक कॉर्पोरेट स्ट्रेस को कम करने में हेल्प कर सकती है क्या?
1: देखिए, बिल्कुल हेल्प कर सकती है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है इट्स एज गुड एज मैजिक पिल, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे जो एंडोर्फिन्स हैं वो रिलीज होते हैं, और ये एंडोर्फिन्स जो है ये नेचुरल स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं। तो एक्सरसाइज तो बिल्कुल मतलब मैजिक पिल की तरह काम करेगा। डीप ब्रीदिंग जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत काम डाउन करता है। तो अगर हम मान लीजिए 7 डीप ब्रेथ्स ले ले, है ना, एंड इवन आई रेकमेंड टू एवरीवन हियर कि आफ्टर से एवरी 2 आवर्स अगर हम ये 7 डीप ब्रीदिंग साइकिल्स कर ले, सो इससे हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई भी सही होता है और फिर हमारा मूड भी सही हो जाता है, प्लस हमारी नर्वस सिस्टम भी काम डाउन होती है। सो द सेकेंड मैजिकल टेक्निक इज डीप ब्रीदिंग फॉर श्योर। एंड तीसरा है कि जैसे 5 मिनट हमको हर 1.5 घंटे के बाद जो ब्रेक लेना है, एक ग्लास पानी पीना है बैठ के और फिर थोड़ा सा वॉक कर लेना है 2-3 मिनट, इससे हमारा मूड बदल सकता है, मूड इम्प्रूव हो सकता है। थोड़ा खिड़की में जाइए, खिड़की से बाहर देखिए, तब फोन हाथ में मत लीजिए। तो ये 3 चीजें तो डेफिनेटली पॉजिटिवली बिल्कुल हेल्पफुल है।
0: तो मेडिटेशन और एक्सरसाइज या फिर ऐसे गहरी सांस लेना और छोड़ना, ये सब चीजें आपने फॉलो की तो आपका जो स्ट्रेस है जो कॉर्पोरेट लाइफ की वजह से आता है वो कम हो सकता है। तो ये बात याद रखिए, मेंटल हेल्थ को वेल रखिए और सुनते रहिए।

मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? क्या है आज की फरमाइश आपकी? वो पूरी करूंगा मैं, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है ना, बस वही। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM एंड आज के गाने की फरमाइश आई है रेनू का काड़े की तरफ से इस गाने के लिए।

जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये सिर्फ गाना नहीं है, ये हकीकत है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लाइफ में चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस कभी खत्म नहीं हो गए। हर दिन हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान होगा, लेकिन असली योद्धा वही है जो मुश्किलों से डरे नहीं बल्कि उनसे हाथ मिला है। लता मंगेशकर जी और नितिन मुकेश ने गाना गाया था और फिल्म थी मेरी जंग 1985 में आई थी। तो चलिए फिर, आप जिंदगी हर कदम एक नई जंग है ये गाना एंजॉय करते हैं। आपकी भी फरमाइश हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। आपकी पूरी फरमाइशें होती है कंप्लीट।

अपने शहर में क्या चल रहा है पता है? बस गर्मी गर्मी और गर्मी। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। बस आजकल की धूप और ये गर्मी कर रही है और नए नए रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं अपने शहर में। तकरीबन ना देखो मई महीने के अंदर 1 से 10 मई के दरमियान अपने शहर में टेम्परेचर 40 डिग्री से नीचे था। तब लग रहा था कि यार शायद से अब टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से ना तो वापस से टेम्परेचर ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया है और तकरीबन 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक अपने शहर का टेम्परेचर पहुंचते हुए नजर आ रहा है। स्पेशली दोपहर 11 से 3 बजे के दरमियान या 4 बजे के दरमियान टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। और आप सोचते होंगे हमें लगता है कि यार शाम के वक्त भी थोड़ी ठंडक हमें महसूस होगी, लेकिन नहीं, शाम के वक्त भी ना तो टेम्परेचर ऐसा ही है, गरम गरम हवाओं के झोंके आ रहे हैं। तो इस वजह से मई महीना अब तक का सबसे हॉट वाला महीना अपना हो चुका है इस साल का। और अगर आप दोपहर के टाइम पर 11 से 4 बजे के दरमियान बाहर निकलोगे ना, रास्तों पर आपको बस सन्नाटा सन्नाटा और सन्नाटा ही नजर आएगा। ऐसा लगेगा कि भाई से लॉकडाउन तो नहीं शुरू हुआ ना, क्योंकि दोपहर में लोग अवॉइड कर रहे हैं बाहर निकलना और करना भी चाहिए। तो आप भी दोपहर के वक्त में जरूरी काम हो तो ही घर के बाहर निकलिएगा, वरना अवॉइड कीजिएगा घर से बाहर निकलना, क्योंकि छोटे से काम के लिए निकलोगे तो बड़ा पछताओगे। इसलिए बी सेफ बी केयरफुल, इस धूप से बचिए, खुद के साथ अपने दिमाग को भी ठंडा रखिए और सुनते रहिए।

0: दोस्तों अपने छत्रपति संभाजी नगर के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM सिटी अपडेट में ये अपडेट है कि अब अपने यहाँ पर ना तो बहुत सारे जॉब के अपॉर्चुनिटीज ओपन होने वाले हैं। टोयोटा कंपनी ने अनाउंस किया है कि बिडकिन में 2029 से हर साल 100,000 SUVs बनाई जाएगी और सबसे खास बात इस प्रोजेक्ट की वजह से लगभग 2,800 लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलने वाला है। सिर्फ जॉब ही नहीं, इसका फायदा पूरे एरिया को होगा। रोड बेटर होगी, नए होटल्स और हॉस्पिटल्स आएंगे, छोटे बिजनेस को काम मिलेगा और एजुकेशन सेक्टर भी ग्रो होगा। टोयोटा इस प्रोजेक्ट में अराउंड 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। मतलब संभाजीनगर अब धीरे धीरे एक बड़े इंडस्ट्रियल हब की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई इंजीनियर, ITI या ऑटोमोबाइल फील्ड में इंटरेस्ट रखता हो ना, तो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ने वाली है। दैट्स अ गुड न्यूज फॉर छत्रपति संभाजीनगर। ऐसा कहते थे कि पहले जब बजाज कंपनी अपने शहर में आई तब शहर का एक अलग तरीके से विकास हुआ था, उसी तरीके का प्रोजेक्ट अब टोयोटा भी अपने यहाँ पर लाने वाली है और इसका काम भी शुरू हो चुका है। तकरीबन 227 एकड़ की जगह है, इस जगह के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है टोयोटा का। तो और भी 5 से 6 कंपनियां अपने शहर में आ रही है, 21,000 लोगों को इनके जरिए काम मिलने वाला है। सो आने वाले वक्त में अपने शहर का एक नक्शा बदल सकता है, ग्रोथ की तरफ बढ़ सकता है अपना शहर। स्टे ट्यून।
1: Future researchers and innovators.
2: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. The seats LLB nantar kara LLM Constitution Criminal and Intellectual Property Rights madhe 2 varshi tar business madhe 1 varshacha vishesh abhyasakram.
1: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
2: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 906-7612-000.
3: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।

जब कोई सपना टूटता है ना तो बहुत तकलीफ होती है भाई। जिस तरीके से अभी नीट एग्जाम को आने का सपना टूट चुका है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM कि नीट का मतलब सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता है, लाखों स्टूडेंट का सपना है। और जब उसी एग्जाम पर पेपर लीक का दाग लग जाता है तो सिर्फ पेपर नहीं, ट्रस्ट भी पूरा टूट जाता है सिस्टम के ऊपर का। और मुझे लगता है कि आप किसी भी स्टूडेंट का ना तो इस सिस्टम पर ट्रस्ट रहा ही नहीं होगा, क्योंकि पहली बार नहीं दूसरी या तीसरी बार ऐसा हो चुका है कि नीट एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है। अभी देश भर में यही सब कुछ चर्चाएं चल रही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक एग्जाम से पहले एक गेस्ट पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो गया था एक कोचिंग क्लास का, और उस गेस्ट पेपर से तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चंस नीट यूजी पेपर में आ गए थे, सेम टू सेम। सोचिए फिर गड़बड़ तो बहुत बड़ी है ना। एक तरफ स्टूडेंट ना तो रात रात भर जागकर पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग शॉर्टकट से फ्यूचर खरीदने की कोशिश करते हैं। तो इसमें नुकसान किसका होता है? जो मेहनती बच्चे होते हैं उनका नुकसान होता है भाई। 2 साल 3 साल 4 साल इन बच्चों ने मेहनत की होती है वो पेपर लिखने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए, और वो पेपर लीक हो जाना, बाप रे बाप। मतलब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर सवाल उठता ही है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर इस देश में एग्जाम होते हैं, इतना बड़ा नीट का एग्जाम उसका भी पेपर लीक होता है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया में स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम पास नहीं करते, प्रेशर, एक्सपेक्टेशन और पेपर लीक जैसे घटनाओं का भी सामना करते हैं। अब तो भाई डिसाइड कर ही दिया गया है कि पेपर कैंसिल हो चुका है और फिर से नीट एग्जाम होने वाली है। तो बच्चा कंपनी लग जाइए फिर से पढ़ाई करने के लिए। और देखिए आप सिस्टम पर आपको भरोसा रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो नहीं भी रख सकते। क्योंकि मेरा तो भरोसा उठ चुका है क्योंकि पेपर लीक हो गया भाई, वो भी तीसरी बार या दूसरी बार। वाह क्या बात है, क्या सिक्योरिटी है अपने यहाँ पर। स्टे ट्यून्ड।

इंडिया में दो चीजें बहुत फास्ट वायरल होती है, एक मीम्स और दूसरा एग्जाम पेपर। अब नीट यूजीसी को ही ले लो ना, एग्जाम हुआ, स्टूडेंट टेंशन में थे, फिर रिलीफ उनको मिल गया और फिर अचानक से पेपर लीक की खबर पूरा इंटरनेट हिला दिया इस बात ने। कहा जा रहा है कि एग्जाम से पहले एक गेस पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर घूम रहा था और उसी गेस पेपर के क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आ गए थे। फिर क्या भाई, नीट यूजीसी ने डिसाइड किया है कि वो एग्जाम कैंसिल करेंगे और फिर से लेंगे। तो अब सारे स्टूडेंट्स का गुस्सा सोशल मीडिया पर दिख रहा है, किसी ने लिखा हम पढ़ रहे और कुछ लोग सेटिंग करके पास हो रहे। और बात तो सही यार, मेहनती बच्चे है, रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं और कुछ लोग सेटिंग करके पास हो जाते हैं। मैटर इतना सीरियस हो गया है कि एनटीए को एग्जाम कैंसिल करना पड़ा और अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। कई जगह रेड और अरेस्ट भी हो चुके हैं, पर सवाल बहुत सारे उठते हैं। सच कहो तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर है? उन स्टूडेंट्स पर जिन्होंने सच में मेहनत की थी, क्योंकि अब उन्हें दोबारा वही स्ट्रेस, वही प्रिपरेशन और वही एंजाइटी फेस करनी पड़ेगी। तकरीबन 23 लाख स्टूडेंट्स को ना तो ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बच्चों ने ये एग्जाम दी थी, अब इन सभी की एग्जाम कैंसिल हो गई है। इसी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट है, बताऊंगा मैं आपको कुछ ही देर में।

0: पेपर लीक होना ये देश में बहुत बड़ी बात नहीं है, और इससे नुकसान बस स्टूडेंट्स का होता है, बाकी सिस्टम का या प्रशासन का, गवर्नमेंट का, किसी का नहीं होता है। जूझता तो एक बच्चा ही है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि अब ये एग्जाम तो फिर से लेने का कह रहे, तो एप्लीकेशन फिर से फिलअप करना पड़ेगा क्या? तो NTA ने कहा है कि एप्लीकेशन फिर से फिलअप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो आपने पहले एप्लीकेशन दिया था उसी के बेस पर एग्जाम होगी। और दूसरा सवाल है कि फीस भी भरना पड़ेगी क्या? तो बिल्कुल नहीं, जो आपने फीस पहले भरी थी उसी फीस के बेस पर आपको ये दोबारा एग्जाम देना पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि ये नीट का रिपीट पेपर कब होने वाला है? आने वाले 7 से 10 दिन के अंदर नया टाइम टेबल जारी होगा, इसके अंदर ही बताया जाएगा कि नीट का नया एग्जाम कब होगा। आई होप कि अभी जो फिर से एग्जाम होने वाला है नीट का, ये तो भी लीक ना हो। अगर ये लीक हो गया तो भाई इसके आगे क्या ही बोले यार, कुछ लफ्ज जबान से नहीं निकाल सकता मैं, कि क्या ही कर सकते हैं। बस प्रशासन के ऊपर भरोसा कीजिए, जो कि पहले भी बच्चों ने किया था, उसका नतीजा यही हुआ है कि पेपर लीक हो गया है। मतलब नीट वाले प्रशासन खोपस नीट प्रकार तुम्हें काम करता है ध्याता दिसुना लेला है। स्टे ट्यून्ड।
1: Future researchers and innovators.
2: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. LLB नंतर करा LLM Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्षे तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम.
1: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
2: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 906 7612 000.

किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है RJ Adnan। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो, तो मेरी जान मैं हूं आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप बेझिझक मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती है। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आ ही गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM,

0: जांबाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम।

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है।

0: बोलते क्यों नहीं?
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। सबसे पहले आप सभी को एक खुशियों भरी और प्यारी सी गुड इवनिंग। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गया होगा और अब ये शाम आपके लिए थोड़ी राहत, थोड़ा मुस्कान और थोड़ा सुकून लेकर आई होगी। दोस्तों, शाम का समय बड़ा खास होता है, पूरा दिन भागदौड़ में निकल जाता है, काम, पढ़ाई, जिम्मेदारियां, लेकिन शाम हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं है बल्कि रुककर मुस्कुराने का भी नाम है। तो जहाँ भी है, जैसे भी है, एक छोटी सी स्माइल जरूर कीजिए क्योंकि आपकी मुस्कान किसी की शाम और भी खूबसूरत बना सकती है। और हाँ, अगर आज का दिन थोड़ा मुश्किल रहा हो तो उसे पीछे छोड़ दीजिए, नई उम्मीदों के साथ इस शाम को एंजॉय कीजिए, अपने पसंदीदा गाने सुनिए, परिवार से बातें कीजिए, दोस्तों को कॉल कीजिए या बस एक कप चाय के साथ खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां ही असली खुशी होती है और हमारा ये शो भी हर शाम आपके लिए वही छोटी सी खुशी लेकर आता है। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे आने वाले हैं कुछ शानदार गाने, ढेर सारी पॉजिटिव वाइब। स्टेडियम टाइम जिम नई पॉइंट फिल्म साथ है तो बात है।

रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। उम्मीद है आपकी शाम मुस्कुराहट से भरी होगी। वह शाम होती ही अक्सर हल्की भूख लगने लगती है और फिर हमारा मन कुछ चटपटा या तला भुना खाने का मन भी करता है, लेकिन अगर स्वाद के साथ सेहत भी मिल जाए तो बात ही अलग हो जाती है। तो आज बात करते हैं एक ऐसे हेल्दी स्नैक की जो आसान भी है और टेस्टी भी है, फिटनेस फ्रेंडली भी है, और वो है ओट्स। जी हाँ, ओट्स सिर्फ सुबह के नाश्ते के लिए नहीं बल्कि शाम के स्नैक्स के लिए भी एक शानदार ऑप्शन है। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और बार बार भूख लगने से बचाता भी है। अगर शाम को समोसे, चिप्स या ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने की जगह हल्के और हेल्दी ओट्स खाए जाए तो शरीर भी हल्का महसूस करता है और एनर्जी भी बनी रहती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ओट्स को कई मज़ेदार तरीकों से बनाया जा सकता है। कोई वेज ओट्स उपमा पसंद करता है, कोई मसाला ओट्स, तो कोई दूध और फलों के साथ स्वीट ओट्स खाना पसंद करता है। और दोस्तों, आजकल फिट रहने का मतलब सही डाइटिंग नहीं बल्कि स्मार्ट और हेल्दी खाने की आदतें अपनाना है। छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर बड़ी हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। तो क्यों ना आज शाम अपने स्नैक्स में थोड़ा हेल्दी ट्विस्ट लाया जाए। और ऑफ कोर्स सुनते रहिए MJ 90.8 FM, साथ है तो बात है।

फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। उम्मीद है आपकी शाम शानदार गुजर रही होगी। वेल, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब फिट और हेल्दी रहना तो चाहते हैं, लेकिन अक्सर कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं कहूँ सिर्फ थोड़ी देर की साइकिलिंग आपकी सेहत में बड़ा बदलाव ला सकती है तो जी हाँ, साइकिलिंग सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल का एक आसान और मजेदार तरीका है। रोज थोड़ी देर साइकिल चलाने से हमारा दिल मजबूत रहता है और शरीर एक्टिव रहता है और तनाव भी काफी कम होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि साइकिलिंग करते समय सिर्फ शरीर ही नहीं मन भी फ्रेश हो जाता है। सुबह की ठंडी हवा हो या शाम की हल्की फुहार, साइकिलिंग के साथ हर रास्ता थोड़ा खूबसूरत लगने लगता है। और वैसे भी आजकल की छोटी दूरियों के लिए भी लोग तो गाड़ी निकाल लेते हैं, लेकिन अगर पास की जगह तक साइकिलिंग से जाया जाए तो पेट्रोल भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा और हेल्थ भी शानदार रहेगी। साइकिलिंग बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है। ये वजन कंट्रोल करने में मदद करती है, स्टैमिना बढ़ाती है और शरीर को फिट रखती है। तो क्यों ना आज से ही एक छोटा सा बदलाव किया जाए, रोज थोड़ा समय अपने लिए निकाला जाए और साइकिलिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। दोस्तों याद रखिए, हेल्दी बॉडी और खुशहाल मन जिंदगी को और भी बेहतर बना देता है। इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ और शानदार गाने सुनते हैं। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: technology, computer science and engineering, cyber security, electronics engineering, VLSI design and technology, electrical engineering, robotics and automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus and NCC Chhatrapati Sambhajinagar.
1: Nairashya, becheni, zopichi samasya, bhiti, chirchir, ata mansik azar lapoichi nahit, upchar gya, samadhan shodha.
2: Dr. Amol Pachikar, manas upchar va vyasan mukti tadnya.
1: Satachi chinta, ati vichar karne, bhiti vatne, dhasti basne, bhas hone, ghabarne, sonshay karne, shankayane, chirchir bana, ekas ghosto puna puna karne, mantra chale pana, vyasan dhita, lahan muran madil va, vrdar madil mansik lakshane, vaivahik samasya, ya sarva samasya anvar upchar, ani samadhan. Samupadeshan vyasan mukti, purush va mahila antarugna suvidha uplabdh, aajas bhet dya.
2: Utkarsh Clinic, Harsul Tea Point, HP Petrol Pump, Shezari, Jalgaon Road, Chhatrapati Sambhajinagar, Antar Rugna Vibhag, Disha Hospital, Samupadeshan Counseling Center, Sant Tukaram Natyagrahacha Javar, Chhatrapati Sambhajinagar. Contact on 8888992688.
3: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
4: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
5: ऑटोमेशन के जमाने में एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
4: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
5: MGM University, Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।

रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। यार प्यार जब दिल में उतरता है ना तो हर गाना खास लगने लगता है और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सीधे दिल की फीलिंग्स को आवाज दे देते हैं। आज ऐसा ही एक खूबसूरत गाना याद आ रहा है मुझे, परदेसिया ये सच है पिया। इस गाने के बोल प्यार की मासूमियत, इंतजार और दिल की धड़कनों को बहुत ही प्यारे अंदाज में बयां करते हैं। जब भी कोई अपने खास इंसान से दूर होता है तो उसकी यादें हर छोटी बात में महसूस होने लगती है और यही एहसास भी इस गाने में सुनाई देता है। इसकी धुन इतनी सॉफ्ट और दिल को छू लेने वाली है कि सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। दोस्तों पुराने गानों की सबसे खूबसूरत बात यही होती थी कि उनमें सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि जज्बात होते थे। हर लाइन में प्यार, अपनापन और सच्चाई महसूस होती थी। कई बार हम अपनी दिल की बातें शब्दों में नहीं कह पाते, लेकिन ऐसे गाने हमारी फीलिंग्स को बड़ी आसानी से बयां कर देते हैं और शायद इसी वजह से ये गाने सालों बाद भी लोगों के दिलों में बसे रहते हैं। तो अगर आप भी किसी खास को याद कर रहे हैं या बस इस प्यारी सी शाम को थोड़ा रोमांटिक बनाना चाहते हैं तो ये गाना आपकी प्लेलिस्ट में जरूर होना चाहिए। सुनते रहिए एमजे 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। उम्मीद है आपकी शाम प्यार और खुशियों से भरी होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खूबसूरत रिश्ते की जो सिर्फ दो लोगों को नहीं बल्कि दो परिवारों को भी जोड़ता है, और वो है वेडिंग यानी शादी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शादी का असली मतलब क्या होता है? क्या शादी सिर्फ रस्में, सजावट या सेलिब्रेशन का नाम है? असल में शादी सिर्फ एक दिन का फंक्शन नहीं बल्कि जिंदगी भर साथ निभाने का एक खूबसूरत वादा है। वेडिंग का मतलब है भरोसा, समझदारी, प्यार और एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देना। जब दो लोग अपने अपनों, खुशियों और जिम्मेदारियों को साथ मिलकर जीने का फैसला करते हैं, वहीं से शादी की असली शुरुआत होती है। दोस्तों, हर रिश्ता समय के साथ मजबूत बनता है। कभी हंसी होती है, कभी छोटी नोकझोंक, लेकिन अगर रिश्तों में सम्मान और अपनापन हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। शादी सिर्फ मैं से हम बनने का सफर है, जहां दो अलग अलग लोग एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं और जिंदगी के हर मोड़ पर साथ चलते रहते हैं। और शायद यही वजह है हमारी जिंदगी में शादी को खास माना जाता है, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ दिलों का नहीं भावनाओं और भरोसे का भी होता है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी किसी की शादी का माहौल है तो उस खुशियों में दिल से एंजॉय कीजिए, क्योंकि शादी सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि प्यारा खूबसूरत जश्न है। और सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। उम्मीद है आपकी शाम अच्छी गुजर रही होगी। वेल, आजकल अक्सर एक बात सुनने में आती है, रिश्तों में दूरियां बढ़ रही है और कई लोग शादी के बाद अलग होने का फैसला भी ले रहे हैं, यानी डिवोर्स अब पहले के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचे तो हर रिश्ते की अपनी कहानी होती है। हर इंसान की सोच, उम्मीदें और परिस्थितियां अलग होती है। कभी गलतफहमियां रिश्तों को कमजोर कर देती है तो कभी समय की कमी और कम्युनिकेशन की दूरी भी असर डालती है। आज की तेज जिंदगी में लोग अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रिश्तों को समय देना मुश्किल हो जाता है और जब बातें दिल में रह जाती है तो धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती है। लेकिन दोस्तों, हर रिश्ता समझदारी, भरोसे और बातचीत से मजबूत हो सकता है। छोटी छोटी बातों को समय रहते समझाना और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही ये भी सच है कि कभी कभी अलग होना भी कुछ लोगों के लिए सही फैसला बन जाता है, क्योंकि रिश्ते में खुशी, सम्मान और मानसिक शांति होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए किसी रिश्ते को देखकर जल्दी जज करने की बजाय हमें समझ और सेंसिटिविटी के साथ सोचना चाहिए। हर इंसान अपनी जिंदगी में शांति और खुशी चाहता है। रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब उनमें प्यार के साथ साथ एक दूसरे को समझने की कोशिश भी हो। थोड़ा समय, थोड़ी बातचीत और थोड़ा अपनापन कई रिश्तों को और भी मजबूत बना सकता है। इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ बेहतरीन सॉन्ग्स ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। उम्मीद है आपकी शाम प्यार और मुस्कुराहट से भरी होगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे रिश्तों की, क्योंकि जिंदगी में रिश्ते ही वो चीज है जो हमें खुशियाँ, अपनापन और हिम्मत देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ साथ होना ही रिश्ता कहलाता है? असल में रिश्ते का मतलब सिर्फ रोज बातें करना या साथ समय बिताना नहीं होता। रिश्तों का असली मतलब है समझना, भरोसा करना और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाना। जब कोई इंसान आपकी खुशी में खुश हो जाए, आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहे, वही से रिश्ते की असली खूबसूरती शुरू होती है। रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से मजबूत बनते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर रिश्तों को समय देना भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों रिश्ते भी पौधों की तरह होते हैं। अगर उन्हें प्यार, समय और देखभाल मिले तभी वो लंबे समय तक हरे भरे रहते हैं। कई बार छोटी छोटी गलतफहमियां रिश्तों में दूरी ला देती है। ऐसे में जरूरी होता है खुलकर बात करना और सामने वाले को समझने की कोशिश करना, क्योंकि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता लेकिन सच्ची कोशिश उसे खूबसूरत जरूर बना सकती है। रिश्ते में सबसे जरूरी चीज है इज्जत, भरोसा और अपनापन। वही रिश्ता दिल को सबसे करीब बनाता है। तो आज इस प्यारी सी शाम में अपने खास लोगों को थोड़ा समय दीजिए, एक कॉल कीजिए, एक प्यारी सी बात कीजिए, क्योंकि मजबूत रिश्ते जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देते हैं। सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: blockchain technology, computer science and engineering, cyber security, electronics engineering, VLSI design and technology, electrical engineering, robotics and automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus and 6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.
1: Nairashya, Bechani, Zopachi Samasya, Bheeti, Chirchir, Ata Manasik Azar, Lapoyachi Nahit, Upchar Gya, Samadhan Shodha.
2: Dr. Amol Patrikar, Manas Upchar Professor Mukti Tadnya.
1: Satachi चिंता अति विचार करने भीती वाटने धास्ति बसने भास होने घाबरने संशय करने शंका येणे चिडचिडपणा एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे मंत्रचाळेपणा व्यसनहीनता लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे वैवाहिक समस्या या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान समुपदेशन व्यसनमुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध आजच भेट द्या
2: उत्कर्ष क्लिनिक हर्सुल टी पॉइंट एचपी पेट्रोल पंप शेजारी जळगाव रोड छत्रपती संभाजीनगर अंतरुग्ण विभाग दिशा हॉस्पिटल समुपदेशन काउंसलिंग सेंटर संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ छत्रपती संभाजीनगर कॉन्टॅक्ट ऑन 888-992688
3: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं
4: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर
3: ऑटोमेशन के जमाने में एआई मशीन लर्निंग आईओटी तो जरूरी है उसके साथ साथ सेंसर्स कंट्रोल सिस्टम कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है सोच बदलो इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो अच्छा जॉब तो मिलना ही है
4: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
3: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering जहां पढ़ाई मतलब direct industry and job ready बनना visit mgmu.ac.in or call 9230-877-84

0: वक्त आ गया है जब हमें आपसे आज के लिए इजाजत लेनी होगी। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। सच कहे तो आप सबके साथ ये खूबसूरत शाम कब गुजर गई पता ही नहीं चला। उम्मीद है आज के हमारे गाने, बातें और छोटी छोटी मुस्कानें आपके दिल को जरूर छू पाई होगी। अगर हमारी आवाज ने आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी लाई हो तो हमारा ये सफर सफल हो गया। दोस्तों, जिंदगी चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो, हमेशा अपने लिए और अपने अपनों के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते रहिए। अगर आज का दिन थोड़ा मुश्किल रहा हो तो उसे यही छोड़ दीजिए और नई उम्मीदों के साथ कल की शुरुआत कीजिए, क्योंकि हर नई सुबह अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। आपकी यही मुस्कान और प्यार हमें हर दिन आपके और करीब ले आता है। दिल से शुक्रिया हमारे साथ इस खूबसूरत शाम का हिस्सा बनने के लिए। अब मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी, हम है राही म्यूजिक के, फिर मिलेंगे चलते चलते ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।
1: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो एमजीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।

दोस्तों अपने छत्रपति संभाजीनगर के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM सिटी अपडेट में ये अपडेट है कि अब अपने यहाँ पर ना तो बहुत सारे जॉब के अपॉर्चुनिटीज ओपन होने वाले हैं। टोयोटा कंपनी ने अनाउंस किया है कि बिडकिन में 2029 से हर साल 100,000 SUVs बनाई जाएगी और सबसे खास बात इस प्रोजेक्ट की वजह से लगभग 2,800 लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलने वाला है। सिर्फ जॉब ही नहीं, इसका फायदा पूरे एरिया को होगा। रोड बेटर होगी, नए होटल्स और हॉस्पिटल्स आएंगे, छोटे बिजनेस को काम मिलेगा और एजुकेशन सेक्टर भी ग्रो होगा। टोयोटा इस प्रोजेक्ट में अराउंड 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। मतलब संभाजीनगर अब धीरे धीरे एक बड़े इंडस्ट्रियल हब की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई इंजीनियर, ITI या ऑटोमोबाइल फील्ड में इंटरेस्ट रखता हो ना, तो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ने वाली है। दैट्स अ गुड न्यूज फॉर छत्रपति संभाजीनगर। ऐसा कहते थे कि पहले जब बजाज कंपनी अपने शहर में आई तब शहर का एक अलग तरीके से विकास हुआ था, उसी तरीके का प्रोजेक्ट अब टोयोटा भी अपने यहाँ पर लाने वाली है और इसका काम भी शुरू हो चुका है। तकरीबन 227 एकड़ की यह जगह है, इस जगह के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है टोयोटा का। तो और भी 5 से 6 कंपनियां अपने शहर में आ रही है, 21,000 लोगों को इनके जरिए काम मिलने वाला है। सो आने वाले वक्त में अपने शहर का एक नक्शा बदल सकता है, ग्रोथ की तरफ बढ़ सकता है अपना शहर। स्टे ट्यून्ड।

जब कोई सपना टूटता है ना तो बहुत तकलीफ होती है भाई, जिस तरीके से अभी नीट एग्जाम को आने का सपना टूट चुका है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM कि नीट का मतलब सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता है, लाखों स्टूडेंट का सपना है। और जब उसी एग्जाम पर पेपर लीक का दाग लग जाता है तो सिर्फ

पेपर नहीं ट्रस्ट भी पूरा टूट जाता है सिस्टम के ऊपर का। और मुझे लगता है कि आप किसी भी स्टूडेंट का ना तो इस सिस्टम पर ट्रस्ट रहा ही नहीं होगा, क्योंकि पहली बार नहीं दूसरी या तीसरी बार ऐसा हो चुका है कि नीट एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है। अभी देश भर में यही सब कुछ चर्चाएं चल रही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कि एग्जाम से पहले एक गेस पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो गया था एक कोचिंग क्लास का, और उस गेस पेपर से तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चंस नीट यूजी पेपर में आ गए थे, सेम टू सेम। सोचिए फिर गड़बड़ तो बहुत बड़ी है ना। एक तरफ स्टूडेंट ना तो रात रात भर जागकर पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग शॉर्टकट से फ्यूचर खरीदने की कोशिश करते हैं। तो इसमें नुकसान किसका होता है? जो मेहनती बच्चे होते हैं उनका नुकसान होता है। भाई 2 साल 3 साल 4 साल इन बच्चों ने मेहनत की होती है वो पेपर लिखने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए, और वो पेपर लीक हो जाना, बाप रे बाप। मतलब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर सवाल उठता ही है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर इस देश में एग्जाम होते हैं, इतना बड़ा नीट का एग्जाम उसका भी पेपर लीक होता है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया में स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम पास नहीं करते, प्रेशर एक्सपेक्टेशन और पेपर लीक जैसे घटनाओं का भी सामना करते हैं। अब तो भाई डिसाइड कर ही दिया गया है कि पेपर कैंसिल हो चुका है और फिर से नीट एग्जाम होने वाली है। तो बच्चा कंपनी लग जाइए फिर से पढ़ाई करने के लिए। और देखिए आप सिस्टम पर आपको भरोसा रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो नहीं भी रख सकते, क्योंकि मेरा तो भरोसा उठ चुका है क्योंकि पेपर लीक हो गया भाई, वो भी तीसरी बार या दूसरी बार। वाह क्या बात है, क्या सिक्योरिटी है अपने यहाँ पर। स्टे ट्यून।

इंडिया में दो चीजें बहुत फास्ट वायरल होती है, एक मीम्स और दूसरा एग्जाम पेपर। अब नीट UGC को ही ले लो ना, एग्जाम हुआ, स्टूडेंट टेंशन में थे, फिर रिलीफ उनको मिल गया और फिर अचानक से पेपर लीक की खबर पूरा इंटरनेट हिला दिया इस बात ने। कहा जा रहा है कि एग्जाम से पहले एक गेस पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर घूम रहा था और उसी गेस पेपर के क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आ गए थे। फिर क्या भाई, नीट UGC ने डिसाइड किया है कि वो एग्जाम कैंसिल करेंगे और फिर से लेंगे। तो अब सारे स्टूडेंट्स का गुस्सा सोशल मीडिया पर दिख रहा है, किसी ने लिखा हम पढ़ रहे और कुछ लोग सेटिंग करके पास हो रहे। और बात तो सही यार, मेहनती बच्चे है, रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं और कुछ लोग सेटिंग करके पास हो जाते हैं। मैटर इतना सीरियस हो गया है कि NTA को एग्जाम कैंसिल करना पड़ा और अब CBI इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। कई जगह रेड और अरेस्ट भी हो चुके हैं, पर सवाल बहुत सारे उठते हैं। सच कहो तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर है? उन स्टूडेंट्स पर जिन्होंने सच में मेहनत की थी, क्योंकि अब उन्हें दोबारा वही स्ट्रेस, वही प्रिपरेशन और वही एंग्जाइटी फेस करनी पड़ेगी। तकरीबन 23 लाख स्टूडेंट्स को ना तो ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बच्चों ने ये एग्जाम दी थी, अब इन सभी की एग्जाम कैंसिल हो गई है। इसी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट है, बताऊंगा मैं आपको कुछ ही देर में।

0: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
0: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
2: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।

0: पेपर लीक होना ये देश में बहुत बड़ी बात नहीं है, और इससे नुकसान बस स्टूडेंट्स का होता है, बाकी सिस्टम का या प्रशासन का, गवर्नमेंट का, किसी का नहीं होता है। जूझता तो एक बच्चा ही है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि अब ये एग्जाम तो फिर से लेने का कह रहे, तो एप्लीकेशन फिर से फिलअप करना पड़ेगा क्या? तो NTA ने कहा है कि एप्लीकेशन फिर से फिलअप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो आपने पहले एप्लीकेशन दिया था उसी के बेस पर एग्जाम होगी। और दूसरा सवाल है कि फीस भी भरना पड़ेगी क्या? तो बिल्कुल नहीं, जो आपने फीस पहले भरी थी उसी फीस के बेस पर आपको ये दोबारा एग्जाम देना पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि ये नीट का रिपीट पेपर कब होने वाला है? आने वाले 7 से 10 दिन के अंदर नया टाइम टेबल जारी होगा, इसके अंदर ही बताया जाएगा कि नीट का नया एग्जाम कब होगा। आई होप कि अभी जो फिर से एग्जाम होने वाला है नीट का, ये तो भी लीक ना हो। अगर ये लीक हो गया तो भाई इसके आगे क्या ही बोले यार, कुछ लफ्ज जबान से नहीं निकाल सकता मैं कि क्या ही कर सकते हैं। बस प्रशासन के ऊपर भरोसा कीजिए, जो कि पहले भी बच्चों ने किया था, उसका नतीजा यही हुआ है कि पेपर लीक हो गया है। मतलब नीट वाले प्रशासन खूबस नीट प्रकारे तुम्हें काम करता है ध्याता दिसुना लेला है। स्टे ट्यून्ड।
1: आपण इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन किंवा जपानी शिकायचं स्वप्न पाहताय की अरेबिक, संस्कृत, मराठी आणि उर्दू यांसारख्या भाषांमध्ये निपुण व्हायचंय,
2: तर मग MGM युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन अँड फॉरेन लँग्वेज मध्ये आपलं स्वागत आहे।
1: अवेलेबल कोर्सेस BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इन इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उर्दू अँड संस्कृत, PGD डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन क्रिएटिव्ह रायटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जपानीज, पर्शियन अँड ट्रान्सलेशन, यासोबतच विविध सर्टिफिकेट कोर्सेस सुद्धा उपलब्ध।
2: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, आजच भेट द्या www.mgmu.ac.in
1: किंवा कॉल करा 9763679245, 9665353515 और 9371714259।

0: आखिरी बार आपने साइकिल कब चलाई थी? याद नहीं ना, बहुत जरूरी है साइकिल चलाना अपने सेहत के लिए भी। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और आज अपने साथ है अपने शो में साइकिलिस्ट प्रणाली चिकटे, जो कि ऑल ओवर इंडिया साइकिल से उन्होंने ट्रैवल किया है, तो आज उनके साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा। हेलो प्रणाली, आपका स्वागत है।
1: हेलो, मेरा नाम प्रणाली है, मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ और मैं एक पर्पस ड्रिवन साइकिलिस्ट हूँ। सो हम सबको पता है कोविड काल में हम सब ट्रैप हुए थे, घर में बंद थे और मैं के लिए ऐसी थी कि मैं साइकिल से ट्रैवल कर रही थी। मैं एक फार्मर फैमिली से आती हूँ और मेरा ग्रेजुएशन सोशल वर्क में हुआ है और ऑल ओवर इंडिया मैंने साइकिल से सोलो अब तक ट्रैवल किया है।
0: सो एग्जैक्टली पर्पस ड्राइविंग साइक्लिस्ट क्या होता है?
1: मतलब एक आप पर्पस के साथ चलते हो, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर आप देखेंगे तो उनका कुछ ना कुछ पर्पस होता है, पर उसके आगे जाके भी कुछ लोगों का बहुत डीपली पर्पस होता है। तो मैं एज अ एनवायरमेंट कॉज को लेकर और साथ में अपनी जो कॉन्शियस लिविंग को लेकर और एक वुमेन एस्पेक्ट लेकर मैं ट्रैवलिंग कर रही थी। हम सबको पता है कि हमारे आज भी सोसाइटी में वुमेन को उस तरीके का अलाउंस नहीं है बाहर घूमने के लिए, पर मैं अकेली सोलो घूम रही थी, वो भी विदाउट प्लानिंग, नो मनी, मतलब कहाँ रहना है खाना है मुझे नहीं पता था। लोगों के साथ मैं अप्रोच करती थी, लोग मुझे मदद करते थे। तो ओवरऑल मैं यूथ के साथ और अलग अलग कम्युनिटी के साथ बातचीत करती थी, वही कि पर्पस के साथ आप ट्रैवल करते हो और वो शेयरिंग होता है, वन वे नहीं होता है। जो अभी हम चीजें देख रहे हैं, हर तरफ फॉरेस्ट कटा जा रहा है, पॉल्यूशन है, अभी देखिए कि कितना टेम्परेचर है, हम 45 सेल्सियस डिग्री तक गए या हीट वेव्स फेस कर रहे हैं, तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से और हमारी कंज्यूमरिज्म लाइफस्टाइल की वजह से जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसको लेकर हमें सोचना चाहिए, हमारी एक समझ होनी चाहिए जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से भी नहीं आ रही है कि हम दिन ब दिन नेचर को देख ही नहीं रहे, सिर्फ ले रहे नेचर से। तो वो एक समझ कैसे बढ़ा पाए, डायलॉग कैसे किया जाए, वो सब मैंने अपनी यात्रा के दौरान किया है और साइकिलिंग को मैंने जगह जगह जाकर प्रमोट किया है कि एटलीस्ट लोग अपने आसपास साइकिलिंग करें।
0: वाओ, क्या यूनिक आइडिया है। मतलब पर्पस ड्राइविंग साइकिलिस्ट क्या होता है इस बारे में अभी हमने जाना प्रणाली से, तो और भी अपनी बातें यूं ही जारी रहेगी बट कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा आने वाले सुपरहिट गाने और सुनते रहिए।

0: देखो भाइयों और बहनों, साइकिल चलाना बहुत जरूरी होता है, इससे पेट्रोल की बचत भी होती है और जेब पर खर्चा भी कम पड़ता है, समझे। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और साइकिलिंग के बारे में आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि अपने साथ है साइकिलिस्ट प्रणाली चिकटे, जिन्होंने बहुत सारी जगहों पर साइकिल से ट्रैवल किया है। सो प्रणाली, ये साइकिलिंग की शुरुआत आपकी कब से हुई थी?
1: मेरी जर्नी कोविड में हुई थी। कोविड में एक्चुअली मेरा जस्ट सोशल वर्क का ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया और थोड़ी अस्वस्थ हुई थी और मैं देख पा रही थी कि आसपास क्या हो रहा है, सब बंद हो गया और मुझे अपने फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा सा मतलब वरीड थी। और फार्मर फैमिली से आती हूँ इसलिए हम देख पा रहे कि फार्मर काफी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अभी। फिर वो चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी कि ये इम्पैक्ट क्यों हो रहा है। मुझे लगा कि देखना चाहिए हमारे आसपास क्या कर रहे हैं लोग, सही क्यों हो रहा है। तो मेरी ऐसे सवालों के साथ यात्रा शुरू हुई और 1.5 साल मैं कोविड में घूमती रही। मतलब अक्टूबर में निकली थी 2020 में, 2021 में गांव जाकर पहुंची। उसके बाद मैंने लद्दाख की जर्नी शुरू की। तो मैंने अपने गांव यवतमाल वणी तहसील पुनवट गांव से शुरू किया था, ओवरऑल विदर्भा ऐसे वहां से शुरू करके पूरा 36 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से कंप्लीट किया मैंने।
0: और ट्रैवलिंग के वक्त ना तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस आए होंगे, तो महाराष्ट्र का आपका अनुभव कैसा था जब आपने यहाँ पर से शुरुआत की थी?
1: मेरा काफी अच्छा था, थोड़ा चैलेंजिंग भी था क्योंकि मैंने जैसे बोला कि हमें एज अ वुमन ऐसे समाज में देखा नहीं जाता कोई ट्रैवल कर रहे, तो रोज मुझे 10 किलोमीटर पे सवाल पूछा जा रहा था, अकेले क्यों ट्रैवल कर रही हो, कुछ 4 लड़के साथ में लेके ट्रैवल करो। तो वो हमें माइंडसेट समझ में आता है कि वो इनसिक्योरिटी किस तरीके की है। और दूसरा, सोसाइटी में पोर्ट्रेट किया है कि लोग काफ़ी बैड ही है, मतलब सोसाइटी बैड है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी लोग अच्छे भी है। मतलब है समाज में ऐसे भी अलग लोग हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, पर मेरी जर्नी में मैं कहीं भी लोगों के यहाँ रहती थी, वो उनको वो खाना देते थे, उनके साथ बातचीत होती थी। तो ओवरऑल मेरे काफ़ी अच्छे ही एक्सपीरियंस है। और इसके बाद मैंने मेरे गांव से लद्दाख तक यात्रा की, मतलब अभी अदर स्टेट भी किया, अभी साउथ इंडिया घूम के आई, पूरे 5 स्टेट कवर किए। तो वहाँ के भी एक्सपीरियंस अलग है, हमें महाराष्ट्र की वेलकमिंग जो कल्चर है वो अलग अलग स्टेट में भी वो दिखाई दिया, जियोग्राफिकल एरिया समझने को मिला। वो मेरा पूरा 5-6 महीने का जर्नी था और अभी साउथ इंडिया का जर्नी जो है वो 2 महीने का था।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो प्रणाली के साथ और भी अपनी ढेर सारी बातें यूं ही जारी रहेगी, बट कुछ ही देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और बंदे का नाम है अदनान। और आज हम बात कर रहे हैं साइक्लिस्ट प्रणाली चिकटे के साथ। सो प्रणाली कहते हैं कि सबसे मुश्किल रास्ते लद्दाख की होती है और आपने लद्दाख तक ट्रैवल किया है, तो उस सफर के बारे में हमें बताइए।
1: यस, साइकिल से काफी मुश्किल है, मतलब देखा जाए तो हाई अल्टीट्यूड होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है और वहाँ पे एक फिर से आप साइकिलिंग करते हो तो आपको मोर ऑक्सीजन और स्ट्रेंथ चाहिए। काफी जगह तो जब हाई हिल्स आया तो मुझे ढक्कल के ही साइकिल चलाना पड़ा और बहुत बार सुनसान रास्ता रहता था, दूर तक लोग नहीं रहते थे, ऐसे भी मतलब सिचुएशन थी। फिर भी व्हील पावर था और मेरा मतलब हमारा जब व्हील पावर होता है तो नेचर पावर हमें सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के, ऐसा कुछ है। और पूरे ट्रैवलिंग में मुझे लद्दाख ही काफी पसंद आया, मतलब वहाँ की जो मतलब नेचर की आजादी जो है, मैं खुद की आजादी महसूस कर पा रही थी।
0: जब हम सोलो ट्रैवल करते हैं, इंसान थक जाता

0: ऐसा हो जाता है कि घर जाती हूँ लेकिन कुछ इंसिडेंट हो जाता है कि किसी के घर जाऊँ और या कोई कभी मैं अपनी ट्रैवलिंग में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करती थी जो सोशल कॉज एनवायरमेंट कॉज को लेकर काम कर रही, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती कि यार हम तो सोच रहे हैं लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे काफ़ी काम कर रहे हैं, तो एक चांस था एक्सप्लोर करने का। कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि ठीक है।
1: क्या बात है, जब इच्छा शक्ति हो ना तो इंसान हर एक थॉट मैनेज कर ही लेता है क्योंकि उसकी इच्छा होती है ये सफर मुकम्मल करना है। और भी अपना सफर मुकम्मल होगा आज के शो में लेकिन ये गानों के बाद। तब तक के लिए स्टे ट्यून।

0: जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
0: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: एडमिशन कॉन्टैक्ट 9371714265 और विजिट www

0: वेलकम टू MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है और मेरे साथ है प्रणाली चिकटे जो कि साइक्लिस्ट है। सो प्रणाली, एज एन सोलो ट्रैवल, आपको क्या क्या चैलेंजेस आए हैं इस ट्रैवलिंग में और फैमिली सपोर्ट कैसा रहा?
1: स्टार्टिंग में जब मैं निकली थी तो विदाउट परमिशन निकली थी, बस उनको फोन पे बताया था। मैं एक अलग डिस्ट्रिक्ट में थी, मैं अपने घर पे नहीं थी। जब थॉट आया कि मुझे बाहर निकलना है तो पेरेंट्स स्टार्टिंग में बोलने लगे कि यार मतलब अच्छा नहीं है वो एरिया, मत जाओ वगैरह। पर मैंने बोला कि मुझे करना है और मैं उतना स्टार्टिंग में ट्रस्ट गेन नहीं कर पाई क्योंकि मैं भी अनसर्टन सिचुएशन को लेकर मुझे पता नहीं था कि क्या हो सकता है। पर धीरे धीरे मैं जैसे आगे बढ़ती गई, लोग सपोर्ट करते रहे और मैं काफ़ी मीडिया में आई थी। धीरे धीरे पेरेंट्स का ट्रस्ट डेवलप करने में मुझे मदद हुई कि हाँ मैं मैनेज कर रही हूँ। और दूसरा, एज अ वुमेन को देख, जैसे मैंने बोला कि आप ट्रैवल करते हो तो लोगों ने कभी देखा नहीं होता कि वुमेन रास्ते पे ऐसे सोलो ट्रैवल कर रही है, तो वो हो जाता है कि आप अकेले क्यों कर रही हो, सोसाइटी बैड है, चार लोगों को साथ में लेके निकलो। तो उन सारी चीज़ों को हमेशा एक्सप्लेनेशन देना, सवालों को जवाब देना, या खुद को प्रूफ करने का नहीं पर वो है माइंडसेट को चैलेंज वो होता है कि इस सही में। और या अदरवाइज मैं टैकल करना सिचुएशन कुछ भी आता है तो रास्ते में सीखती गई, तो इतना कुछ डिफिकल्ट रहा नहीं।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और आप एक इनिशिएटिव के साथ ट्रैवल कर रही है, साइकिल चाक, तो उस बारे में जरा हमें बताइए।
1: सो मेनली साइकिल चाक इनिशिएटिव के माध्यम से ये अप्रोच है कि हमारी सिटीज मतलब इतनी भी बड़ी नहीं है, 10 किलोमीटर के रेडियस में 5 किलोमीटर में सब कुछ हमें मिल जाता है। तो हम 2 किलोमीटर के लिए गाड़ी निकाल लेते हैं तो हमारे पास ट्रैफिक पॉल्यूशन ये बढ़ता है। सो हम सोचे कि एटलीस्ट 2 किलोमीटर, या हम मार्केट में जा रहे हैं या हमें लाना है या वेजिटेबल लाना है, एटलीस्ट हम अपनी साइकिल लेके जाए और वहाँ जो भी डेली काम हो सकते वो अगर हम साइकिल से 5 किलोमीटर के रेडियस में करें तो हम बहुत बड़ा बदलाव अपने एरिया में देख सकते हैं।
0: नजदीकी जगहों पर छोटे डिस्टेंस पर जाने के लिए हम सभी लोग साइकिल का यूज कर सकते हैं यार। इससे देखो फायदे बहुत हो गए, एक तो पेट्रोल के पैसे भी बचेंगे, आपकी फिटनेस भी बरकरार रहेगी और ये हमारा पर्यावरण है ये भी ठीक ठाक रहेगा। सो साइकिल यूज करना शुरू कीजिएगा, परिवर्तन अपने आप आएगा। एंड थैंक यू सो मच प्रणाली, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।
2: आपण इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन किंवा जपानी शिकायचं स्वप्न पाहत आहे की अरेबिक, संस्कृत, मराठी आणि उर्दू यांसारख्या भाषांमध्ये निपुण व्हायचंय,
3: तर मग MGM युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन अँड फॉरेन लँग्वेज मध्ये आपलं स्वागत आहे।
2: अवेलेबल कोर्सेस BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इन इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उर्दू अँड संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन क्रिएटिव्ह रायटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जपानीज, पर्शियन अँड ट्रान्सलेशन, यासोबतच विविध सर्टिफिकेट कोर्सेस सुद्धा उपलब्ध।
3: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, आजच भेट द्या www.mgmu.ac.in
2: किंवा कॉल करा 9763679245, 9665353515 और 9371714259।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात।

0: देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हजार

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है